0: बजार क्षेत्रमा फोहोर जथाभावी नफालौ, डस्टबिनमा फालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दियौ। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर,
1: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।
2: बजार व्यवस्थापन समाज निवा FM 106.6।

0: सही सोचों सही रोजों।
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि।
2: सामाजिक सञ्जालले बालक बुझे यान जग बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग फलो यान दिस सुना लिंक चैकेन्य ओछुकीय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन उनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक यान दिस बाम लागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थया त शंका जुल धासा बैंक या त खबर यान दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

छौं राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस हनीगु झोले बालपनीय रक्षा भविष्य सुरक्षा दैगु नारायण पौ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस हनीगु झोले दो बालमैत्री वातावरण बाल अधिकार प्रबन्धन याट यागु याकेगु नागरिक समाज व फोकस सरकार वाला याट ठप जिम्मेवार व जवाब देखेको उद्देश्य दशम भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस हनाउया चङ्गु दो भाद्र 10 गते भोटे खुसी जिया त्रिशुरी खुसी वोगु विनाशकारी खुसी बाया हुनी रसुवा नुवाकोट धादिङ लगायत जिल्ला धनजन्य क्षेत्रीय हुनी मा बाल संरक्षकको अभिभावक घुमेयापी बेपत्ता जुबी व बाल बालिका स्वयं थहे घापा व बेपत्ता जुबी बाल बालिका या उद्धार रात व संरक्षण यामागु आवश्यकता दो अजापी मस्ते त अस्थायी संरक्षण व मनोसामाजिक परामर्श लगायत सेवा उपलब्ध या कि त राज्य तलिन डुगो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दन थ्यादिल डुगो अवसर थौ परिषद लगायत थिति संस्थान ज्याजो या गोसा गोया टगु दो पशुपति लगायत सुथनी छे भक्तजन पिनेगो भीर पेङु हे लुखा चाखल थौ तीज पर्व हरितालका तीज लस्ताय पशुपति लागा सुथन छे भक्तजन पि मो मो खण्ड डोगो डो पशुपति नाच्य दर्शन या त चाने निसे भक्तजन पि ठङ्को ख तिन

baje sota yin che paspedi nati ya pengu he lukha chako gudo paspedi chitra bikas kosh ya katam dega laga pravesh ya go ya ta bhakta jan ya niti a pengu darshan marga ya byavastha ya gudo napangu mitra park uma kunda dakshina murti kailas badri narsingh ya bhavan jya basuki nati ya uttar pake ya lukha लुखान पशुपति मन्दिर या उत्तर पाखे या ऱ्याम्प पाखे दर्शन या किसा पश्चिम लुखा पाखे पिने पिहा उ निगो लाइन जय बागेश्वरी पाखे अख जिया मार्ग दस टोल पाचा गणेश अन्नपूर्ण भण्डार महास्नान गर्ने या एक टमर लुखा या निहने डुगो आकाशे पुल पाखे भुवनेश्वरी नासल चोक जिया शङ्कराचार्य मठ निहने या आकाशे पुल आकाशे ताम प्रहरी पहरा गण्य चिरङ लुखा लुखा निगु निगुको लाइन पशुपति या पश्चिम रिखे डुगु सिया ऱ्याम्प पाखे दर्शन या किसा पश्चिम लुखा पाखे बिहा हुनेको व्यवस्था डगुदो अठे तेस्रो सोङ्गुको कठन टिलगङ्गा पर्यटन काउन्टर नापन डुगु लुखा राम मन्दिर बागमती किनारा जुवा आर्य घाटे तहाँ पाखे ब्रह्मनाल पूर्व लुखा लुखा त्यागु ऱ्याम्प पाखे पूर्व मुहारे दर्शन याना उगुए लुखा पाखे लिहा हुनेको व मेघो पिङ्ला स्थानीय पिङ्ला स्थानीय डुगु लुखा जिया पेङ्गु शिवालय पञ्चदेवल ब्रिटासन दक्षिण पाखे या तरङ्गु लुखा निहने अस्थायी आकाशे तान जिया चिरङ्गु लुखा पाखे चौसठी कोटी कोटी लिङ्गेश्वर जिया देगया दक्षिण मुहारी दर्शन याना उन्मत्त भैरव मन्दिर या पश्चिम पाखे या मूल भत्त निवास निहने पाखे लिहा हुनेको प्रबन्ध हामीले यहाँ टगो कोष या सञ्चालक परिषदीय दुर्ज उप प्रचार प्रसार उप समिति संयोजक संगीता कुमारी राम जानकारी दिएर थौ पशुपति देग प्रवेश प्रवेश यही याना यो निखौ जुने भक्त जनपिस दर्शन या त याना लिहा फैको कठम लाइन या व्यवस्था याई याना टगु दो स्वयंसेवक सुरक्षा कर्मी व कर्मचारी भिड व्यवस्थापन परिचालन याना टगु डुसा शान्ति सुरक्षा या त ध्यान तया मन्दिर देग लागा ठेङ्की त बहुमूल्य गरगना म तसे उनी त कोष आह्वान यागुदो पशुपति दर्शन या त वेबले वैपी भक्तजन विष्णु गाडी पार्किङ या नीति गुहेश्वरी पारी सिफल चौर टिलगङ्गा या खाली ठ्या कोष या जाकुटी परिसर व गौशाला चुङ्गु मानव ट्राफिक प्रहरी प्रभाग या जाकुटी व्यवस्था या टगुदो सरकारी गाडी या त कोष जाकुटी व सुरक्षा निकाय या त प्रहरी प्रभाग पार्किङ या त प्रबन्ध मिलेन टगु ढागुदो यहाँ साहित्य सार्वजनिक आय मिगो आइतबार यो सिन्थनी त सीमा पाल नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति ठुसी यहाँ साहित्य सार्वजनिक या गुदो यहाँ नख या प्रक्रिया यहाँ राष्ट्र द्वितीय निसे यो सिन्थनी त सीमा पाउने त वन या उनीको साहित्य मिगो भडो अठाइस आइतबार सुतसिया 953 ताइले जोगो समिति नाय लिसे सह प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम भट्टराई जानकारी बिहादिर सीमा पालेको साइट बनी सिया 847 ताइले जुगु ख खोपया चित्त पोल वन वन यो सिने सीमा पालेको परम्परा रेवाचुङ्गु वैकलन जानकारी बिहादिर यो सि नगरे डुटे हेगो साइट असो 3 गते शनिबार सुठे 8-5 ताइले डुगु समिति ढागुदो यो सिन्थनीको साइट असो 7 गते बुधबार सुतसिया 747 ताइले जोगुन सह प्राध्यापक भट्टराई कना डिल अठे यहाँ मु ढिकुन असो 9 गते शुक्रबार कोनी ट्वाले यात्रा यही ठुकुने राष्ट्रपति ऋषि अति विशिष्ट व्यक्तित्व हनुमान ढाका या गद्दी बैठक उना कुमारी यात्रा अवलोकन यहीको परम्परा दयावय चुङ्गु वैक्रम ध्यान नेतना डिल असो 10 गते शनिबार थनी ट्वाले यात्रा यहीसा असो 13 गते मंगलबार मिस्ते संजक रड साला नान्चया उनी अन्ठोए दि कुनु बहनी नौ
25 ताईले योसिन कोथलेगु साइट डुगु समिति ठागुदो योसिन कोथले ढुङ्गा बनिए रास्ता दिशेन कुमारी गणेश्वर भैरव दर्शन याना प्रसाद ग्रहण या ढुङ्गा 13 छिन सोनु टाकगु या नख कोचाई जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या त लुमङका बिचा मुजा जुल जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या त लुमङका बिचा मुजा यागुदो यहाँ नेपाल ब्याङ्कवेट मिगो आइतबार सुथे नेपाल भाषा मङ्का खोल नेवा देदेबु नेपाल भाषा एकाडेमी नेपाल भाषा मिसा खोल विराट नेपाल भाषा गुठी लिपि गुठी नेवा पत्रकार डबु लिसे थिति खोल पुच मङ्का घोषाले बिचा मुजा यागु ख बिचा मुजा नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर नेवा हेलुवा मल्ल के सुन्दर जनकवि श्रेष्ठ या कया दुग्यङ्क नुगोख तसै जनकवि श्रेष्ठ नेपाली छमन ढाटेमो कवि जुगु जीवन या लिपाङ्गु इलेन वेक कविता हे चोया बिले जुगु खन पङ्का दिगु ख चान्सलर मल्ल जनकवि श्रेष्ठ साहित्य विधाय कविता जगमखु मे नाटक सक्रा विधाय पूर्णता डुम व्यक्तित्व जुगु दासे वे कया योगदान व जीवन या त कया ठगु विचाप तया दिगु ख विचाप मुजा ज्याजोले जनकवि श्रेष्ठ या तरिकम काय सुमन श्रेष्ठ ठ अबु दुर्गालाल श्रेष्ठ या त सक्सेन लुमङका मटिना यागुली सुभा देसासे दुर्गालाल श्रेष्ठ चोया दिगु खस भाषा मृत्यु सम्बन्धी अप्रकाशित चिना खन बोना निङ्का दिगु ख विचा मुजा ठिठी कलाकार बिन्सन जनकवि श्रेष्ठ चोया दिगु छी झिगु निम्ति मधुसा नेपाय निम्ति मुयामा दैगु मेलिसे ठिठी मेहाला न्याङ्कुको खसा कवि त्रिप्रति सरा साइमी लोक कवि राजभाइ जकमी बिन्सन चिना खन हे भए दिगु ख नेवा देदेबु या नाया रश्मिला प्रजापति सभापति जोगो ओगो ज्याजोले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ लुमङका छोगु मिनेट मौन धारण यागु खसा घोषा खलपाखे जनकवि दुर्गालाल या किपते सुहाँ देछना श्रद्धाञ्जली पङ्कुगु ख बिचा मोज्या नेपाल भाषा ख्य ठिठी हनी बपि व्यक्तित्व पिनीगु उपस्थिति डुगु खसा वेक पिनीगु पाखे जनकवि श्रेष्ठ या किपाते सुहाँ देछना श्रद्धाञ्जली पङ्कुगु ख जलन उपचार नीति यी महानगर किपु अस्पताल या त बिल निगु करोड यी महानगरपालिका जलन उपचार नीति उपचार वा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन नीति किपु अस्पताल या त निगु करोड टका उपलब्ध याको दो महानगरपालिका उपलब्ध याको रकम मध्ये 6 करोड टका जल उपचार कोषे 23 मिलियन मेगो 6 करोड टका उपचार आवश्यक औजार वा उपकरण खरिदे खर्च यही महानगरपालिका किपु अस्पताल जनस्वास्थ्य सरकार ट्रस्ट नापन सम्झौता याना लसित वर्ग जलन या बिरामी या त प्रति व्यक्ति निगु लाख टक्का निशुल्क उपचार उपलब्ध या के व्यवस्था या आगो ख महानगरपालिका कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलो प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मुक्तिराम अर्याले रोबरे महानगरपालिका पक्ष स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक कुमार केसी राप अस्पतालले कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधान सम्झौता लाची तयार डिगु मानव गठन जलन उपचार कोष त्यागको 1 करोड टका या लसित वर्ग बिरामी या उपचार खर्च बिहोरे यही चालु आर्थिक दय कोष या रकम खर्च दुई मफुसा वैगो आर्थिक दय न जलन या उपचार उपचार छलीको व्यवस्था यहाँ टगुदो अति विपन्न हिंसा पीडित व्यवहारिस जलन या बिरामी या त महानगरपालिका स्वास्थ्य शिक्षा समिति सिफारिस निशुल्क उपचार उपलब्ध या कि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र या स्थायी बासिन्दा कानून कठमा बसाइसरी या जुवा व पिङ व्यक्ति महानगरीय जनप्रतिनिधि कर्मचारी व उमिगो परिवार डुज पिन्सन छुको सेवाका फै महानगरपालिका गठन उपचार खर्च प्रति व्यक्ति अधिकतम निगु लख टक्का या कोषमा बिहोरे यही तर अस्पताल या क्याबिन इएचएस व कस्मेटिक उपचार धास बिरामी उपचार धास खर्च कोष पाके कोषमा यही मुख हो महानगरपालिका उपलब्ध 6 करोड टका या
तपाईँ एनेस्थेसिया मेसिन 250 केभी जेनेरेटर वा 500 एमए क्षमता डिजिटल एक्सरे मेसिन यागुदो कार्यवाहक प्रमुख दङ्गोलो उपकरण अस्पताल या त हस्तान्तरण दिगुदो दङ्गोलो आर्थिक अभाव हुने जनाले बिरामी उपचार पाखे वञ्चित जिम्माको अवस्था अन्त्य या त कोष स्थापना यानको ध्यादेल भवितव्य जीवम ठेव मरिया अस्पताल उनीको अवस्था अस्पताल मोखरीको अवस्था मोहेमा ढगा अस्पताल छनिमो बिरामी टोटा ढिपा मानित उनमाको अवस्था या अन्त्य यामाको उद्देश्य कोष व्यवस्था यानको खटाइदिल आगलागि नियन्त्रण झोले अग्रपङ्क्ति दैपी खटे जीवी अग्नि नियन्त्रक नगर प्रहरी स्वास्थ्य कर्मी जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी या त जलन पाखे जोगे बच्चेजीको उपायबारे क्षमता विकास ज्याजो सञ्चालन याको जानकारी ब्याइदिल महानगरपालिका उपलब्ध याको 500 एमए या डिजिटल एक्सरे मेसिन पाखे दैनिक 160 मसिया सेवा बी फैगुन अस्पताल ठाको दो महानगरपालिका ठुसुबेन हो वीर अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर शिक्षण अस्पताल र कान्तिपाल अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्था आवश्यक पूर्वाधार उपकरण उपलब्ध याको यहाँका वेचुङ खस नागरिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार या त महानगर अस्पताल स्थापना या तयारी न जेचुङ कार्यवाहक प्रमुख दङ्गोल ध्यादिल जीव दुर्घटना जुवा सानीबेरी निमसित गुम घापा जीव दुर्घटना जुवा रुकुम पश्चिम सानीबेरी गाउँपालिका 6 देउता खुसी निम सिगु दुसा गुम घापा जोगुदो कोट गाउँ पाखे गाउँपालिका केन्द्र सानीबेरी 9 सिमली जुया खलङ्गा पाखे 1 2 1 6 7 29 ल्याय जीव आइतबार दुर्घटना लागु जिल्ला प्रहरी जाकुटी रुकुम पश्चिम जानकारी बेगुदो जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद बहादुर पौडेलले गठन दुर्घटना निम सिगु दुसा सिपिनीको सनाखत जोगुमरुने पेम टचुक घापा जोगु दुसा मेपी न्यामेसिगु अवस्था मध्यम जोगु प्रहरी जानकारी बेगुदो सानीबेरी 6 या वडा 8 पहल सिंह घटिया गठन सिपी मध्ये 6 जीप चालक मेम 6 मिसा ख आइपी निम घटनास्थल सिगु ख जीपे छिन्सम छोना वगु व जीपिया साउ बलबहादुर पुनिसे गुम खापा जोगु वडा 8 घरती थागुदो घटनास्थल स्थानीय प्रहरी पुच ठङ्कुको डुसा जिल्ला प्रहरी प्रमुख पौडेल नेतृत्व थप टोली घटनास्थल पाखे वङ्गु प्रहरी जानकारी बेगुदो नेपा पाखे सङ्कीपा तिनीहरू अस्कर अवार्ड ढेनेबललाई नीति सिफारिस सन् 2027 द एकाडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सेस द अस्कर पाखे लडाइगु गुई गुको 900 कोग एकाडेमी अवार्ड्स ढेनेबललाई अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म विदाय नीति नेपा पाखे सङ्कीपा तिनीहरू एलिफेन्ट्स एलिफेन्ट्स इन द फग लिजा जोगुदो अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म छनौट समिति नेपाल नायक लक्ष्मीनाथ शर्मा पाखे आइतबार सार्वजनिक यागु प्रेस विज्ञप्ति कदम अवार्ड कासै नीति नेपाल पाखे निगु कथानक सङ्कीपा तिनीहरू एलिफेन्ट्स इन द फग व गौथली आवेदन रूपमा प्राप्त जोगो ख प्राप्त जोगो निगुली सङ्कीपा प्राविधिक पक्ष बाखाने प्रस्तुति पात्र पिणीको भावनात्मक विश्लेषण व कलात्मक शिल्प या त ध्यान तया गहन अध्ययन व एकाडेमी या मापदण्ड गठन मूल्याङ्कन यावले तिनीहरू एलिफेन्ट्स डट फग या त आधिकारिक निर्देशलाई गठन अस्करी सिफारिस यागु समिति जानकारी बेगुदो छनौट समिति नेपालले शर्मा लिसे डुजोपी लोकेन्द्र पराजुली कपिल गौतम धिमाल जीवन कुमार पराजुली व विकेश सुवेदी डो एसियाली खेलकुद नीति नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा जापानी आइजी नायोगा वैगु असोज 3/18 जुइगु एसियाली खेलकुद कासा नीति नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा जोगुदो नेपाल ओलम्पिक कमिटी हिग दिपेन्द्र सिंह एरिया कप्तानी झिन्याम सदस्य दुगु टोली घोषणा यागु ख टोली दिपेन्द्र नापम रोहित कुमार पौडेल सोमपाल कामी करण केसी सन्दीप लामिसाने आरिफ शेख आसिफ
शेख कुशल बोर्टेल, ललित नारायण राजवंशी, गुलशन कुमार झा, नन्दन यादव, लोकेश बम, सन्दीप जोरा, शेर मल्ल, कुशल मल्ल डो। नेपाल मलेसिया हङकङ ओमान चरण पारदर्शी एसिया कप स्थान ठ्याएको गुदो। अठे अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका वरिताई आधारे तपाईँको मितिसा जापान आयोजक गठन सहभागी दो। नेपाल हापाङ समूह चढ्ने अफगानिस्तान व आयोजक जापान नव मितिसा शीर्ष निगु लाइगो टोली क्वार्टर फाइनल ठनी। इन्डोनेसिया 240 यात्रु डुगु जहाज बेपत्ता, मालेसिया जुवा चढ्न ठाउँमा 240 निसा पिएम यात्रु र सवार जोगो छ। इन्डोनेसियाली यात्रुवाहक जहाज जाबा सागर सम्पर्क विहीन जोगो इन्डोनेसियाली खोजदिसे उडार अधिकारी विंसँग आइतबार जानकारी भएको दो। दक्षिण कालीमन्टान प्रान्त या खोजदिसे उडार निकाय या गठन उगो जहाज पूर्वी जाबा प्रान्त सुरा वाया पाखे दक्षिण कालीमन्टान प्रान्त बन्जार मासिन पाखे यात्रा हेर्न चुङ्गु झोले जहाज दिशे स्वापु टुवाडगु ख। अधिकारी ते कठन जहाज लिपाङ्गु ज्ञात अवस्थित बन्जार मासिन या खोज दिशे उद्धार केन्द्र पाखे ठाउँमा ठाउँ 80 चेगु समुद्री माइल तापक लान चुङ्गु ख। जहाज सम्पर्क बिन्द्री रुङ्का खोज दिशे उद्धार नीति मेगु उद्धार जहाज घटनास्थल पाखे छोगु दु छोक डुसा उडार टोली सम्पर्क बिन जहाज अवस्थिति सिकेको लिसे उकी सवार यात्रु टेट मालिकको कुटाइन चङ्गु ढाको दो। प्रारम्भिक जानकारी कठन सपु टबले न्यो सपु ट्वाडले न्यो उगु यात्रु भाग जहाज खराब मौसम यात्रा फया चङ्गु ख। समुद्री क्षेत्र प्रतिकूल मौसम या हुने जहाज यात्रा प्रभावित जोगु जिफाइगु अधिकारी पिन्सन ढाको दो। आठको घटना छुन कठैया मानवीय क्षति जोगो जानकारी मोहनीको खोज दिसे उदार अधिकारी टेसन धागु दो। अठे खसा जहाज छेउमा 240 मा सवार डोगोली उद्धार टोली खोजी दिशे उद्धार अभियान टचुएको डो। इन्डोनेसियाली अधिकारी टेसन जहाज अवस्थिति हो यात्रु टेको अवस्था बारे थप जानकारी क्याएको कुट याना चोङ्गु डो। नेनाटीले ठाउँ या नेपाल भाषा भुख भुख या मुमु भुखका आग्रह नेनाटी ठाउँ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस हनीको झोले पशुपति लागे सुथन से भक्त जिन पी मोमो पेङ्गु हे लुखा च्याकल यहाँ या साइत सार्वजनिक आइतबार योसी या सीमा पालेको ज्या कोचाल जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या लुमका विचार मुजा यात जलन उपचार नीति ए मानवर पाखे किपु अस्पताल निगु करोड टक्का अनुदान गोहाली जीप दुर्घटना जुया सानी बेरी निमसित गुम घापा नेपाल पाखे सङ्किपा तिनीहरू अस्कर अवार्ड नेपाललाई नीति सिफारिस। यसैली खेलकुद नीति नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा इन्डोनेसिया 240 यात्रु डुगु जहाज बेपत्ता मालेसिया जुया चोन तपाईँ नेपाल भाषा पुख थनेको चागुदो। प्राविधिक पात्र दिलीप महर्जन लिसेजी विशा साकेन ठाउँ यात्रा छिपाखे ब्या छिगुदी भिजीमा सुभा जेमा भा।

धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा नाप सार्वजनिक स्थल त सिचु पिचु याना किपुया पर्यटन प्रबन्धन अभियानले सकसिन ग्वालियर दिस किपु नगरपालिका दुईवटा जाकु देवढोका किपु।

0: सिद्धार्थ बैंक पाके जनहित जारी सन्देश।
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई। दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, जीवनको लागि

0: मठ मन्दिर पाटी पौवाहरू हाम्रो पहिचान र पुर्खाका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। स्वच्छ सफा राखी त्यसको जगेर्ना गरौँ। किर्तिपुर नगरपालिका 2 वटा कार्यालय देवढोका किर्तिपुर।
1: अले फुक्क भया जटा सिडल्ला
2: अ सिरि ढुंकल
1: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याज्या खुठी वना ब्लक याना वेट न
1: अले बैंकेले
2: बैंके
1: खटया
2: अनछा या मालले
1: ओला या मागुने ठौगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जुगु बैंक यातना जानकारी बियादिस अले ठौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्दे
3: Siddhartha Bank, Sambandha, Sadai Bharilai.
4: Kajaria Tiles, your world-class luxury.
5: Jojalpa, Jikalpana Maharjan, Salamata Aroi Napan Sanchar Karmi. Newasa, Newa FM, 106.6, Nichitachi, 24 Ghanta, Prasaran Zuya Changudu. www.newafm.com.np लगन याना नाप हाम्रो पात्र वाव टाइम्स एप्स पाकी मोबाइल विषय गुगुन थासी नेवा एफएम 106.6 नेनाडी फाई।

जुजलपा जी गायक जुजुकाजी रञ्जित, नेपाल भाषा एकाडेमी या नीति अनक मिडिया या नेभया, भाषा साहित्य व संस्कृति सह नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो, न्याना दिसन, न्याङ्का दिसन, शुभ।

0: जथाभावी रुख नकाटौं, वन जंगल हरियाली जोगाऊ, तोल बस्ती वातावरण सफा राखौ, पर्यावरण बचाऊ, रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं, कीर्तिपुर चार वडाको चम्पा देवी दर्शन गरौं, सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौं। कीर्तिपुर नगरपालिका चार वडा कार्यालय कीर्तिपुर काठमाडौं।
1: बैंक गुगले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिसा वो छि त ठगे या त सनाचोङ दो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याई म हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिसा उमेको विवरण कया बैंक नेना दिसा सतर्क जुया दिसा ठगी पाखे बचे जुया दिसा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।

जोजलपा जिम्या लामी पूर्णमान महर्जन सिसा नेना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिस नेङ्का दिस नेवा जुयागु गर्व याना दिस।

ठाउँ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस हनीगु झोले बालपनीय रक्षा भविष्य सुरक्षा दैगु नारायण ठाउँ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस हनीगु झोले दो बालमैत्री वातावरण बाल अधिकार प्रबन्धन याट यागु याकेगु नागरिक समाज व फोकस सरकार वाला याट ठप जिम्मेवार व जवाब दै देखेको उद्देश्य दसम भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस हनाउया चङ्गु दो भाद्र 10 गते भोटे खुसी जिया त्रिशुरी खुसी वोगु विनाशकारी खुसी बाया हुनी रसुवा नुवाकोट धादिङ लगायत जिल्ला धनजन्य क्षेत्रीय हुनी बा बाल संरक्षकको अभिभावक अगुमेयापी बेपत्ता जुबी व बाल बालिका स्वयं थे घापा व बेपत्ता जुबी बाल

का या उदार राहत व संरक्षण यामागु आवश्यकता दो अजापी मस्ते त अस्थायी संरक्षण व मनोसामाजिक परामर्श लगायत सेवा उपलब्ध या कि त राज्य तलिन डुगो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दन दिल डुगो अवसर ठाउँ परिसर लगायत तिथि संस्थान ज्याजो या गोसा गोयाटोगो दो पशुपति लागा सुथानी छे भक्तजन पिनेको भीर पेङ्गु हे लुखा चाखल ठाउँ तीज पर्व हरितालका तीज लस्ता पशुपति लागा या लागा सुथानी छे भक्तजन पि मो खण्ड डोगो डो पशुपति नाथ दर्शन या त चानी छे भक्तजन पि ठङ्को ख तीन बजे स्वता इनिसे पशुपति नाथ या पेङ्गु हे लुखा चाको डो पशुपति क्षेत्र विकास कोष या कठ डेग लागा प्रवेश यागु या त भक्तजन या नीति पेङ्गु दर्शन मार्ग व्यवस्था यागु दो नापाङ्गु मित्र पार्क उमा कुण्ड दक्षिणा मूर्ति कैलाश बद्री नरसिंह या भवन जिया वासुकी नाथ या उत्तर पाके या लुखा लुखा पशुपति मन्दिर या उत्तर पाखे या ऱ्याम्प पाखे दर्शन या किसा पश्चिम लुखा पाखे पिने पिहा उही निगोको लाइन जय बागेश्वरी पाखे अख जिया मार्ग दसु टोल पाचा गणेश अन्नपूर्ण भण्डार महास्नान घर निहने या एक टम्बर लुखा या निहने डुगो आकाशे पुल पाखे भुवनेश्वरी नासल चोक जिया शङ्कराचार्य मठ निहने या आकाशे पुल आकाशे ताम प्रहरी पहरा गण्य चिरङ्गु लुखा लुखा निगु निगुको लाइन पशुपति या पश्चिम रिखे डुगु सि या ऱ्याम पाखे दर्शन या कि पश्चिम लुखा पाखे बिहा हुनेको व्यवस्था डगुदो अठे तेस्रो सङ्गुको कठन तिलगङ्गा पर्यटन काउन्टर नापन डुगु लुखा राम मन्दिर बागमती किनारा जुवा आर्य घाट तहाँ पाखे ब्रह्मनाल पूर्व लुखा लुखा त्यागु ऱ्याम पाखे पूर्व मुहारे दर्शन याना उगुए लुखा पाखे लिहा हुनेको व मेघो पिङ्ला स्थानीय पिङ्ला स्थानीय डुगु लुखा जुया पेङ्गु शिवालय पञ्चदेवल वृद्धाश्रम दक्षिण पाखे या तडङ्गु लुखा निहने अस्थायी आकाशे तान जुया चिरङ्गु लुखा पाखे चौसठी कोटी लिङ्गेश्वर जुया देग या दक्षिण मुहार या दर्शन याना उन्मत्त भैरव मन्दिर या पश्चिम पाखे या मूल भत्त निवास निहने पाखे लिहा हुनेको प्रबन्ध हामीले यहाँ टगो कोष या सञ्चालक परिषद या डुज उप प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक संगीता कुमारी राम जानकारी दिएर थौङ पशुपति देग प्रवेश प्रवेश यही याना यो निखौ दुने भक्त जनपिसन दर्शन या त याना लिहा फैको कठम लाइन या व्यवस्था याई याना टगु दो स्वयंसेवक सुरक्षा कर्मी व कर्मचारी भीड व्यवस्थापन परिचालन याना टगु दुसा शान्ति सुरक्षा या त ध्यान तया मन्दिर देग लागा ठेङ्की त बहुमूल्य गरगना म तसे उनी त कोष आह्वान यागु दो पशुपति दर्शन या त वेबले वेबी भक्तजन विष्णु गाडी पार्किङ या नीति गुहेश्वरी पारी सिफल चौर टिलगङ्गा या खाली ठ्या कोष या जाकुटी परिसर व गौशाला चुङ्गु मानव ट्राफिक प्रहरी प्रभाग या जाकुटी व्यवस्था या टगो दो सरकारी गाडी या त कोष जाकुटी व सुरक्षा निकाय या त प्रहरी प्रभाग पार्किङ या त प्रबन्ध मिलेन टगो ढागु दो यहाँ साहित्य सार्वजनिक हिगो आइतबार यो सिन्थनेट सीमा पाल नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति ठुसी यहाँ साहित्य सार्वजनिक यागुदो यहाँ नख या प्रक्रिया यहाँ लाठो द्वितीय निसे यहाँ यो सिन्थनेट सीमा पाउने वन यात्रा या उनीको साहित्य हिगो भडो 28 गते आइतबार सुतसिया 9:53 ताइले जोगो समिति नाय लिसे
सह प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम भट्टराई जानकारी बिहा दिएर सीमा पालेको साइत बनी सिया 847 ताइले जुगु ख खोपया चित्त पोल वन वन योसी छनेटर सीमा पालेको परम्परा रेवा चङ्गु वैकलन जानकारी बिहा दिएर योसी नगरे डुटे हेगो साइत असोज 3 गते शनिबार सुटे 8-5 ताइले डुगु समिति ठाकु दो योसी छनेको साइत असोज 7 गते बुधबार सुत सिया 747 ताइले जुगुन सह प्राध्यापक भट्टराई कना डिल अठे मु ढिकुन असोज 9 गते शुक्रबार कोनी ट्वाले यात्रा यही ठुकुने राष्ट्रपति अति विशिष्ट व्यक्तित्व हनुमान ढाका गद्दी बैठक उना कुमारी यात्रा अवलोकन यही परम्परा दयावय चुङ्गु वैकलन ध्यान दिल असोज 10 गते शनिबार थनी ट्वाले यात्रा यैसा असोज 13 गते मंगलबार मिस्ते संजक रड साला नान्चया उनी अन्ठोए ढिकुनु बहनी 9-25 ताइले योसिंह कोथलेगु साइट डुगु समिति ठाकु दो योसिंह कोथले ढुङ्गा बनी ए रास्ता दिशे कुमारी गणेश्वर भैरव दर्शन याना प्रसार ग्रहण या ढुङ्गा 13 चिन सोनु टाकगु या नख कोचाई जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ यात्रा लुमङ्का बिचा मुजा जुल जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ यात्रा लुमङ्का बिचा मुजा यागुदो यहाँ नेपाल ब्याङ्कवेट मिगो आइतबार सुथे नेपाल भाषा मङ्का खोल नेवा देदेबु नेपाल भाषा एकाडेमी नेपाल भाषा मिसा खोल विराट नेपाल भाषा गुठी लिपि गुठी नेवा पत्रकार डबु लिसे थिति खोल पुचय मङ्का घोषाले बिचा मुजा यागु ख बिचा मुजा नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर नेवा हेलुवा मल्ल के सुन्दर जनकवि श्रेष्ठ यात्रा कया दुग्यङ्क नुवख तसै जनकवि श्रेष्ठ नेपाय छमन ढाटेमो कवि जुगु जीवन या लिपाङ्गु इलेन वेक कविता हे चोया बिले जुगु खन पङ्का दिगु ख चान्सलर मल्ल जनकवि श्रेष्ठ साहित्य विधाय कविता जग मकु मे नाटक सकना विधाय पूर्णता डुम व्यक्तित्व जुगु धासे वे कया योगदान व जीवन या त कया ठगु विचाप तया दिगु ख विचाप मुजा ज्याजोले जनकवि श्रेष्ठ या तरिकम काय सुमन श्रेष्ठ ठ अबु दुर्गालाल श्रेष्ठ यात्र सक्सेन लुमङका मटिना यागुली सुभा जेठासे दुर्गालाल श्रेष्ठ चोया दिगु खस भाषा मृत्यु सम्बन्धी अप्रकाशित चिना खन बोना निङ्का दिगु ख विचा मुजा ठिची कलाकार बिंस जनकवि श्रेष्ठ चोया दिगु छी झिगु निम्ति मधुसा नेपाय निम्ति मुयामा दैगु मेलिसे ठिची मेहाला निङ्कुको खसा कवि त्रिप्रति सदा साइमी लोक कवि राजभाइ जकमी बिंस चिना खन हे भए दिगु ख नेवा देदेबु या नाया रश्मिला प्रजापति सभापति जोगो ओगो ज्याजोले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ लुमङ्का छोगु मिनेट मौन धारण यागु खसा घोषा खलपाखे जनकवि दुर्गालाल या किपते सुहाँ देशना श्रद्धाञ्जली पङ्कुगु ख बिचा मुज्या नेपाल भाषा ख्य ठिठी हनी बपि व्यक्तित्व पिनीको उपस्थिति डुगु खसा वेक पिनीगु पाखेन जनकवि श्रेष्ठ या किपाते सुहाँ देशना श्रद्धाञ्जली पङ्कुगु ख जलन उपचार नीति यी महानगर किपु अस्पताल यता बिल निगु करोड यी महानगरपालिका जलन उपचार नीति उपचार वा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन नीति किपु अस्पताल यता निगु करोड टका उपलब्ध याको दो महानगरपालिका उपलब्ध याको रकम मध्ये 6 करोड टका जल उपचार कोषे 23 मिलियन मेगो 6 करोड टका उपचार आवश्यक औजार वा उपकरण खरिदे खर्च यही महानगरपालिका किपु अस्पताल जनस्वास्थ्य सरकार ट्रस्ट नापन सम्झौता याना लसित वर्ग जलन या बिरामी या त प्रति व्यक्ति निगु लाख टक्का निशुल्क उपचार उपलब्ध या के व्यवस्था यागु ख महानगरपालिका कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलो प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मुक्तिराम अर्याले रोबरे महानगरपालिका पक्ष स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक कुमार केसी राप अस्पतालीय कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधान सम्झौता लाची तयार डिगु मानव गठन जलन उपचार कोष त्यागको 1 करोड टका या लक्षित वर्ग बिरामी या उपचार खर्च बिहोरे यही चालु आर्थिक दैन कोष या रकम खर्च दुई मफुसा वैगो आर्थिक दैन टकम न जलन या उपचार उपचार छलीको व्यवस्था यहाँ टगो दो अति विपन्न हिंसा पीडित व व्यवहारिस जलन या बिरामी या त महानगरपालिका स्वास्थ्य शिक्षा समिति सिफारिस निशुल्क उपचार उपलब्ध या कि काठमाडौँ
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र या स्थायी बासिन्दा कानुन कठमा बसाइसरे या ओपी व्यक्ति महानगरीय जनप्रतिनिधि कर्मचारी वा उमिगो परिवारीय डुजपिन्सन छुको सेवाका फै महानगरपालिका कठमा उपचार खर्च प्रति व्यक्ति अधिकतम 2 लाख टक्का या कोषमा बिहोर यही तर अस्पताल या क्याबिन इएचएस वा कस्मेटिक उपचार धास बिरामी उपचार धास खर्च कोष पाके कोषमा यही मानव बेलका उपलब्ध एक छको करोड टकैया तका पछि एनेस्थेसिया मेसिन 250 केबी या जेनेरेटर वा 500 एमए क्षमता या डिजिटल एक्सरे मेसिन न्यागुदो कार्यभाग प्रमुख दङ्गोला उपकरण अस्पताल या त हस्तान्तरण दिगुदो दङ्गोलो आर्थिक अभाव या हुने चलने बिरामी उपचार या पाखे वञ्चित जिम्माको अवस्था अन्त्य या त कोष स्थापना या नगु ध्यादेल भवितव्य जीवम ठेवा मलिया अस्पताल उनीको अवस्था अस्पताल उनी मोखरीको अवस्था मोहेमा ढगा अस्पताल छनिमो बिरामी टोटा ढिपा मानित उनमाको अवस्था या अन्त्य यामाको उद्देश्य कोष या व्यवस्था या नगु खटाइदिल वेग्ला आगलागि नियन्त्रण या झोले अग्रपङ्क्ति दैपी खटे जीवी अग्नि नियन्त्रक नगर प्रहरी स्वास्थ्य कर्मी जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी या त जलन पाखे जोगे बच्चेजीको उपायबारे क्षमता विकास ज्याजो सञ्चालन ल्याएको जानकारी ब्याइदिएर महानगरपालिका उपलब्ध ल्याएको 500 MA या डिजिटल एक्सरे मेसिन पाखे दैनिक 160 मसिया सेवा बी फैगुन अस्पताल ठाकुदो महानगरपालिका ठुसुबेन हो वीर अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर शिक्षण अस्पताल र कान्तिपाल अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्था र आवश्यक पूर्वाधार वा उपकरण उपलब्ध याका वेचुङ खस नागरिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार या त महानगर अस्पताल स्थापना या तयारी न जेचुङ कार्यभाग प्रमुख दङ्गोल ध्यादिल जीव दुर्घटना जुवा सानीबेरी निमसित गुम घापा जीव दुर्घटना जुवा रुकुम पश्चिम या सानीबेरी गाउँपालिका 6 देउता खुसी निम सिगु दुसा गुम घापा जोगुदो कोट गाउँ पाखे गाउँपालिका केन्द्र सानीबेरी 9 सिमली जुया खलङ्ग पाखे 1 2 1 6 7 29 ल्याय जीव आइतबार दुर्घटना लागु जिल्ला प्रहरी जाकुटी रुकुम पश्चिम जानकारी बेगुदो जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक वेद बहादुर पौडेलले कठन दुर्घटना निमसिएको दुसा सिपिनीको सनाखर जोगु मरुनी पेम टचुक घापा जोगु दुसा मेपी न्यामेसीको अवस्था मध्यम जोगु प्रहरी जानकारी बेगुदो सानीबेरी 6 या 8 वडा पहल सिंह घटिया गठन सिपी मध्ये 6 जीप चालक वा मेम 6 मिसा ख आइपी निम घटनास्थल सिगु ख जीपे छिन्सम छोना वगु वा जीपिया साउ बलबहादुर पुनिसे गुम खापा जोगु वडादेशी घरती थागुदो घटनास्थल स्थानीय प्रहरी फुच ठङ्कुको डुसा जिल्ला प्रहरी प्रमुख पौडेल या नेतृत्व थप टोली घटनास्थल पाखे वङ्गु प्रहरी जानकारी बेगुदो नेपा पाखे सङ्कीपा तिनीहरू अस्कर अवार्ड ढेने बल्लाई नीति सिफारिस सन् 2027 द एकाडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सेस द अस्कर पाखे लडाइगु गुई गुको 900 को एकाडेमी अवार्ड्स ढेने बल्लाई अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म विदाय नीति नेपा पाखे सङ्कीपा तिनीहरू एलिफेन्ट्स द एलिफेन्ट्स इन द फग लियो जा जोगुदो अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म छनौट समिति नेपाल नायक लक्ष्मीनाथ शर्मा पाखे आइतबार सार्वजनिक यागु प्रेस विज्ञप्ति कदम अवार्ड कासै नीति नेपाल पाखे निगु कथानक सङ्कीपा तिनीहरू एलिफेन्ट्स इन द फग व गौथली आवेदन रूपमा प्राप्त जोगो ख प्राप्त जोगो निगुली सङ्कीपा प्राविधिक पक्ष बाखा या प्रस्तुति पात्र पिनको भावनात्मक विश्लेषण वा कलात्मक शिल्प या त ध्यान तया गहन अध्ययन वा एकाडेमी या मापदण्ड गठन मूल्याङ्कन यावले तिनीहरू एलिफेन्ट्स डट फग या त आधिकारिक धेरैवलाई गठन अस्कर सिफारिस यागु समिति जानकारी बेगुदो छनौट समिति नेपालले शर्मा लिसे डुजोपी लोकेन्द्र पराजुली कपिल गौतम धिमाल जीवन कुमार पराजुली वा विकेश सुवेदी डो ए
एसियाली खेलकुद नीति नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा जापानी आइजी नायोगा वुइगु असोज 3/18 गतेको दुईगो एसियाली खेलकुद कासा नीति नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा जोगुदो नेपाल ओलम्पिक कमिटी हिग दिपेन्द्र सिंह एरिया कप्तानी झिन्याम सदस्य दुगु टोली घोषणा यागो ख टोली दिपेन्द्र नापम रोहित कुमार पौडेल सोमपाल कामी करण केसी सन्दीप लामिसाने आरिफ शेख आसिफ शेख कुशल भोटेल ललित नारायण राजवंशी गुलशन कुमार झा नन्दन यादव लोकेश बम सन्दीप जोरा शेर मल्ल कुशल मल्ल डो नेपाल मलेसिया हङकङ ओमान चरण पारदर्शी एसिया कप स्थान ठ्याएको गुदो अठे अफगानिस्तान बङ्गलादेश भारत पाकिस्तान व श्रीलङ्का वरिटाई आधार तपाईँको मितिसा जापान आयोजक गठन सहभागी डो नेपाल हापाङ समूह चढ्ने अफगानिस्तान व आयोजक जापान नवमी दिशा शीर्ष न्युगु लाइगो टोली क्वार्टर फाइनल छन्। निर्णय देशमा पिने भोख इन्डोनेसिया 240 म यात्रु डुगु जहाज बेपत्ता मालेजिया जुवा जन ठाउँमा 240 निसो पिएम यात्रु र सवार जोगो छ इन्डोनेसियाली यात्रुवाहक जहाज जाबा सागर सम्पर्कविहीन जोगो इन्डोनेसियाली खोज दिशे उडार अधिकारी बिनसँग आइतबार जानकारी भएको दो दक्षिण कालीमन्टान प्रान्त या खोज दिशे उडार निकाय या गठन उगो जहाज पूर्वी जाबा प्रान्त सुरा वाया पाखे दक्षिण कालीमन्टान प्रान्त बन्जार मासिन पाखे यात्रा हेर्न चुङ्गु झोले जहाज दिशे स्वापु टुवाडगु ख अधिकारी ते कठन जहाज लिपाङ ग्याट अवस्थित बन्जार मासिन या खोज दिशे उद्धार केन्द्र पाखे ठाउँ ठाउँ 80 चेगु समुद्री माइल तापक लान चुङ्गु ख जहाज सम्पर्क बिन दुई रुङका खोज दिशे उद्धार एनिटी मेगु उडार जहाज घटनास्थल पाखे छोगु दु छोग डुसा उडार टोली सम्पर्क बिन जहाज अवस्थिति सिकेको लिसे उकी सवार यात्रु टेट मालिक कुटाइन चङ्गु ढाको दो प्रारम्भिक जानकारी कठ सपु टबले न्यो सपु ट्वाडले न्यो उगु यात्रु भाग जहाज खराब मौसम या त फया चङ्गु ख समुद्री क्षेत्र प्रतिकूल मौसम या हुने जहाज यात्रा प्रभावित जोगु जिफाइगु अधिकारी पिन्सन ढाको दो आठको घटना छुन कठाया मानवीय क्षति जोगो जानकारी मोहनीको खोज दिसे उद्धार अधिकारी टेसन ढाको दो अठे खसा जहाज छेउमा 240 म सवार डोगोली उद्धार टोली खोजी दिशे उद्धार अभियान टचुएको डो इन्डोनेसियाली अधिकारी टेसन जहाज अवस्थिति हो यात्रु टेको अवस्था बारे थप जानकारी क्याएको कुट यान चोङ्गु डो नेनाटीले ठाउँ या नेपाल भाषा भुख भुख या मुमु भुखका आक्रमण नेनाटीसँग ठाउँ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस हनीको झोले पशुपति लगाए सुथन से भक्तजिन पी मोमो पेङ्गुहे लुखा च्याकल यहाँ या साइत सार्वजनिक आइतबार योसी या सीमा पालेको ज्या कोचाल जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या लुमका बिचा मुजा या त जलन उपचार नीति ए महानगर पाखे किपु अस्पताल या त निगु करोड टक्का अनुदान गोहाली जीव दुर्घटना ज्या सानी बेरी निमसित गुम घापा नेपाल पाखे सङ्किपा चिनेहरू अस्कर अवार्ड नेपाललाई नीति सिफारिस यसैली खेलकुद नीति नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा इन्डोनेसिया 240 यात्रु डुगु जहाज बेपत्ता मालेजिया जुया छोन थमे नेपाल भाषा पुख थनेको चागुदो प्राविधिक पाचा दिलीप महर्जन निसेजी विभिषा साके नठौँ यात्रा छिपाखे ब्या चिउदी भिजीमा सुभा जेमा भए।

0: तले फुक्क भया जाटा सिडर ला
1: सिरे ढुङ्कल
0: सँग पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानला
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम या ज्याखुठी वना ब्लक याना वेट न
0: तले बैंकेले
1: बुइंके
0: खटया
1: अनसा या मालले
0: वला या माहुने थौगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक याता न जानकारी बियादिस अले थौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
1: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
3: Kajaria Tiles, your world-class luxury.
4: नियम पालक नागरिक नै सभ्य नागरिकको पहिचान हो।
5: बजार क्षेत्रमा सडक पेटीबाट हिड्ने बानी बसालौं। दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऊ। 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतपुर नगरपालिका।
6: खोखर भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6
7: झीगु बही झीगु बौद्ध संस्कृति

जोजो लपा जी राजेश महाजन नेवा छि नेना चुना दिगुटु नेपाया गौरव नेवा मसिका नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेङ्गा दिसा।

0: एटिएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुनान छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिसित ठगे या त सनाचो मुदो नाप ब्याङ्क कर्मचारी जुगु दाबी या म हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिस उमेको विवरण कया ब्याङ्क नेना दिस सतर्क जुया दिस ठगी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ ब्याङ्क पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नसातो सया सक्का सभा क्याट
0: नेवा लहना रेस्टुरेन्ट खा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी
2: तले फुक्क फोय जटा सिडरला
3: अहा सिरी ढुंकल
2: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
3: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनो हे टेलिकम या ज्याखुथि वना ब्लक याना वेदन
2: तले बैंकेले
3: बुइंके
2: खटया
3: अनसाया मालले
2: वला यामा हुने छगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जुगु बैंक यातना जानकारी बियादिस अले ठगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे छिनीगु पाखे बचेज बियादिस
3: सतर्क बियादिस ठगी पाखे बचेज बियादिस
2: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्दे
4: Siddhartha Bank, Sambandha, Sadai Bharilai.
5: Kajaria Tiles, your world-class luxury.
6: Bhasha Sahitya o Sanskriti Yasa.
7: Yoma!
6: Yoma! Thokha Newa FM 106.6. Jatalapa Namaste, Jikalaka Rojina Suhal. Jee!

इतिहास या कुचा ख थो इतिहास या कुचा विक्रम संबत 2022 साल या वैशाख 21 गते गुखुनु पंचायत व्यवस्था नेपाल भाषायत रेडियो नेपाल या लुखाम पिटिन हला अले वहे हकुगुनिया विरोध है सहर सहर जकमकु सुनिगाय गाम पा न्यंक भन आंदोलन दनावला थोहे

युग हिला, प्रजातंत्र वाला शासन सत्ता जनप्रतिनिधि धापिन थिएन, तरन तरन अफसोस जाति वो भाषा खेले खया चंगु फुसे चंगु खिमिला छिला मकी उन बुलहू

0: बैंक विवरण बिलो धासा खाता दिबो वही हो
1: से बा सिसा लटरी भए न जगुला
2: मधु छाठे मुइचा लटरी लागुला बा लागु ए खनी
1: परे महिना गु लटरी गठिना लाइले बा छुजागु मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गनन होला धासा विश्वास याने दिमटे फोने वसा थगु विवरण गबले बिमटे सुन वित्तीय संस्था छिगो पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काइमको ठोला बैंक हे न काइम
3: सतर्क जदि सो ठगी पाके बचे जदि सो
0: सिद्धार्थ बैंक पाके जनहित जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।

0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: Kajaria Tiles, your world-class luxury.
3: Jojo Lepa, Ji Madan Krishna Sreshta, Anak Media Ye Nhiboya, Newa FM 106.6, Mega Hertz Radio, Jino Nyena, Chino Nyena, Supaya.
0: So,

0: बुझे याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याके वो छुकी नीति ख सुना छयागु ख वो गनौनी बालक थुका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थया त शंखा जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी संदेश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: Neva Television.
1: Neva, you can go, come on, yeah, let's go.

स्थान छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अझको जानकारी कालादासा ठिका दिशा।

0: बजार क्षेत्रमा फोहर जथाभावी नफालौ, डस्टबिनमा फालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दियौ। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर,
1: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।
2: नेपाल भाषा या थिति सकिपा या मसिका सकिपा ख्या दुःख व गतिविधि नाप नुनु भूमि या जानकारी गया दिइदि यदा दिशा ज्याजो यवा सकिपा सोम्बा पतिका।

0: लटरी
1: लागुला बा लागु या खनि
2: परे महिनागु लटरी गठिना लाइले बा छुदागु मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गनन होला थासा विश्वास याने दिमटे फोने वसा थगु विवरण गबले बिमटे सुन वित्तीय संस्था छिगु पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काइमको ठोला बैंक हेन काइम
3: सतर्क जदि छ थगी पाके बचे जदि छ
0: सिद्धार्थ बैंक पाके जनहित जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
5: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता
6: सूर्य ज्योति सही प्लान
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: सेवा एफएम 106.6
1: पुरस्कार के रूप में हरा रहे थे दौड़ी 2026 साल प्रकाश मिश्रा कम्पिटिशन यहाँ फर्स्ट प्राइज के दर्शक मेरे साथी टीवी ने आज सब आ गया

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति नेवा नशा तो सया सकता सभा क्या
0: नेवा लहना रेस्टोरेंट हाँ बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन तब खुला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसाजा सानी
2: जोजो लपा जी वैकुण्ठ महेन्द्र म्याराथन कासा जी नेवा टेगो छबु जकस नेवा एफएम 106.6 नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या न्यौ बोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेंका दिस नेना छने जीव सुदा सुबै

0: पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो, तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ।
1: अले फुक्क भया जटा सिडरला
2: अ सिरी ढुंकल
1: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याज्या खुठी वना ब्लक याना वेट न
1: अले बैंकेले
2: बैंके
1: खटया
2: अनछा या मालले
1: ओला या माहुने थौगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक यातना जानकारी बियादिस अले थौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
0: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

जोजलपा जी गायक जुजुकाजी रन्जित, नेपाल भाषा एकाडेमी या नीति अनक मिडिया या नेभया भाषा साहित्य व संस्कृति सह नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो न्याना दिशा न्याङ्का दिशा शुभ।

Guarda, andiamo!

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नसातु सया सक्ता सभा क्यात
0: नेवा लहना रेस्टुरेन्ट खा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसाजा सानी।

जोजेलपा जिकल्पना महर्जन सलमाठा आरोही नाप संचार कर्मी नेवास नेवा एफएम 106.6 निछिचाची 24 घण्टा प्रसारण जुया चंगुदु www.newafm.com.np लगन याना नाप हाम्रो पात्र वाव टाइम्स एप्स पाखी मोबाइल विषय गुगुन थासी नेवा एफएम 106.6 नेनाडी फै

0: इच्छा छ। नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति मसिकेट नेवा नशा तुसाय सत्ता सभा क्याट
0: नेवा लहना ग्रेस्टुरे खा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताय जीवन्त गो खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी अपील अपील अपील सडक कृतिबाट हिँड्ने बानी गरौँ, दुर्घटनाबाट बचाउँ, नियम अनुशासन कायम गरौँ, सत्यताको परिचय दिउँ, जथाभावी पार्किङ नगरौँ, सडक सधैँ सफा राखौँ, सडक नियमको पालना गरौँ, सबै नागरिकको परिचय दिउँ, दण्ड र जरिवानाबाट बचौँ, सडक पेटीमा सामान नराखौँ, बटुवालाई सम्मान गरौँ, सबै सहरको परिचय दिउँ। किपू नगरपालिका महानगरी प्रहरी वृत्त महानगरी ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज नेवा एफएम 106.6
2: मैचा सोसा बाय द लॉटरी लाटा हूँ बहन के विवरण बिलो दासा खाता दे वही हूँ
3: सी बा सीसा लॉटरी बाय ना दिया गुला
4: मधु छाट है मैचा लॉटरी लागुला बन लागु ये खानी
3: परे महीना गु लॉटरी गठे ना लाई ले बा तुझा गु मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गना ना बोला दासा विश्वास याने दी मटे फोन ये वो सा था गु विवरण गबले बी मटे सुना बीटीएस संस्था छिगो पासवर्ड पिन आदि गुबले काई मको थोला बैंक है ना काई मको
2: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी संदेश
5: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
6: जोजो लपा जी मदन कृष्ण श्रेष्ठ अनक मिडिया निगोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो जिनो निना सिनो निन्दिसा सुपा
5: सो

रोजल्लपा जिम्या लामी पूर्णमान महर्जन छिसा नेना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिसा नेङ्का जिसा नेवा जुयागु गर्व याना जिसा।

जोजो लप्पा जे राजेश महाजन नेवा छि नेना चुना दिगुटु नेपाया गौरव नेवा मसिका नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेङ्गा दिशा।

0: नेवा लहना नेपा डेया चिसाखा नेवा जातिया गौरव
1: नेवा संस्कृति मसिकेट नेवा नसा तुसाया सत्ता सभा क्यात
0: नेवा लहना ग्रेस्तुरे खा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी प्रभाग कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज नेवा एफएम 106.3

0: हाम्रो पातो जोड्छ नेपालीलाई।
1: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे यान जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो यान दिस सुन लिंक च्याकेन वो छुकीय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन उनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक यान दिस बाम लागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुन खे थया त शंखा जुल धासा बैंक या त खबर यान दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई
3: थोसर गते।

0: बजार क्षेत्रमा फोहोर जथाभावी नफालौ, डस्टबिनमा फालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दियौ। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर,
1: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
4: जथाभावी रुख नकाटौ, वन जंगल हरियाली जोगाऊ, टोल बस्ती वातावरण सफा राखौं, पर्यावरण बचाऊ,
5: रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं, कीर्तिपुर चारवटाको चम्पा देवी दर्शन गरौं,
6: सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौं।
7: कीर्तिपुर नगरपालिका चारवटा कार्यालय कीर्तिपुर काठमाडौं।
8: नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिडिया प्रालय नेवा भाषा साहित्य वा संस्कृति नेवा एफएम 106.6 निना दिसा निंका दिसा।

0: विशाख, नेवा जातीय गौरव,
1: नेवा संस्कृति महसिकेट, नेवा नशा तोसाया सक्ता सभा क्याट,
0: नेवा लहना रेस्टुरेन्ट, थाहा बहा किपु,
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय,
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी।
2: बजार व्यवस्थापन समाज नेवा एफएम 106.6।

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नसा तुसाया सत्ता सभा क्याट
0: नेवा लहना ग्रेस्टुरेन खा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसाचा सानी
2: प्रभाग कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज नेवा एफएम 106.6

0: बजार क्षेत्रमा फोहोर जथाभावी नफालौ, डस्टबिनमा फालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दियौ। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर,
1: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।
0: प्रभाग कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज निवा 106.6।